शेर के दिन इंशाल्लाह माहौल बन जाएगा, सुरूर जरूर आएगा। कुरान हमारा था, कुरान हमारा है।